0: छटी है चल पुलिस हो तबे
1: देखाने हो हमले ओए देखाने हो हमले देखाने हो हमले ओए देखाने हो हमले इस तो भी है करेरा

देखा नहीं हो हमले ओए देखा नहीं हो हमले देखा नहीं हो हमले ओए देखा नहीं हो हमले इस तो भी है कारेरा देखा नहीं हो हमले इतिहास इतिहास इतिहास में चर्चा चल

0: ए नानी हो कता जानी हो
1: अनि देखेन र डोको नाम्रो बोकेर घाँस काट्न जान लाग्यो
0: ए हो त नि गाँसे ममोरनी सत्तरी।

शर्मा क्रॉम्पटन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउनुहोस् हरेक 15 दिन में क्रॉम्पटन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।